प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी ले पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा खालसा कलेक्शन दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो, सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसी तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North East Calgary। प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक M&R Roofing and Siding Limited दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फेशिया स्मार्ट ट्रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नूं 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R Roofing and Siding Limited।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंकुएट हाल के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह के ब्याह शादी के प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंकुएट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकते हो। रियो बैंकुएट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा। ए सिद्धा सरकार नूं बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

प्रोग्राम का ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानने लई आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फर्स्ट चॉइस लाइटिंग, प्लंबिंग ते इलेक्ट्रिकल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फर्स्ट चॉइस लाइटिंग एंड प्लंबिंग दा फोन नंबर 403-457-1457 यानी 403-457-1457। इना दे शोरूम दा पता है, यूनिट नंबर 2120-3961 52 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी, कॉमनवेल्थ हाल दे बिल्कुल नेड़े।

नानक बुझण पूरे भागे। विस्माद एक ओ अवस्था जिथे मनुख दी सोच शक्ति शिथिल हो जाए, अगों सोच ना सके, ऐसी हालत विच जो अवस्था बन दी है उनू आश्चर्यता विस्माद रहस्यमय विस्मय करके कहंदे ने। आसा दीवार दी जो ये तीसरी पौड़ी है, इस दे नाल जो पहले पातशाह जी दे ये दो सलोक ने, ये दे च कादर दी तरफों वर्ती है जिहड़ी कुदरत ते कुदरत दे जो विस्मादता है, उस दा साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज जिक्र करदे ने। अजोके समय च विस्माद मनुख दी जिंदगी च खत्म होंदा जा रहा है, क्योंकि मनुख जद हंकारी हो जाए तो वह कह देंदा है मैं सब कुछ जानदा। जैसे ये दावा होवे कि मैं सब कुछ जानदा, उत्थे विस्माद दा जन्म नहीं आउंदा, उत्थे रहस दा जन्म नहीं आउंदा, उत्थे आश्चर्यता पैदा नहीं आउंदी। हैरान कुन अवस्था उत्थे बनदी है जद ऐसा मनुख सोचे ते उसदे कोल बारीक बुद्ध होवे कि मैं जो कुछ वेख्या है पूरा नहीं वेख्या, मैं जो कुछ सुने है पूरा नहीं सुनिया, मैं जो कुछ सोचे है पूरा नहीं सोचे है, मैं जितना गवन कीता है फिर भी मैं पूरा गवन नहीं कीता, मैनू जो कुछ दिखाई दे रहा है ये इतना ही नहीं, ये होर भी है, ये होर भी है। ऐसी बुद्धि लई विनम्रता चाहिए है, निर्माणता चाहिए। कहिंदे ने एक बच्चा रहस्य देश जीवंदा है, एक कवि रहस्य देश जीवंदा है, एक संत रहस्य देश जीवंदा है। इन्हां तिन्हां तो इलावा मनुख दी जिंदगी देश आश्चर्यता विस्माद हैरान कुन अवस्था देखनी बहुत औखी है, क्यों कि इन्हां तो बिना जो जीवन है वह अहंकारी है, ते अहंकारी दी जिंदगी च विस्माद नहीं आउंदा। बच्चा विनिम्र है, जो कुछ नहीं जानदा उहदे बारे उसका जानकारी का दावा नहीं है, उहदे बारे उसका प्रगटावा नहीं कि मैं जानदा। इस वास्ते बच्चा उड़दियां हुई तितलियां नूं वेख के भी विस्माद विच लीन हो जाता है, बच्चा खिड़े हुए फुलां नूं वेख के भी सोचण ते मजबूर हो जाता है कि धरती दे चों ये कैसा सुअपन, धरती दे चों ये कैसा नूर। एक बच्चा ते सूरज नूं वेख के भी हैरान हो जाता है, और इस तरह की थोड़ी जिहा भी बुद्ध रखण वाला मासूम बच्चा जद रात नूं चंद्रमा नूं वेखदा है चमकदे हुए नूं, रहस नाल भर जाता है, विस्माद नाल भर जाता है। लेकिन ये विस्माद बच्चे दी अबोध अवस्था ते खड़ा है, अचेत अवस्था ते खड़ा है। एक होर विस्माद है जो कवि कोल है, शायर कोल है, और जिथे विस्माद नहीं शायरी का जन्म भी नहीं आता। आम मनोविज्ञानी का कहना है कि रहस्यमयी अवस्था तो ही कविता का जन्म है, शायरी का जन्म है, कि जिस शायरी का जिस कविता दो रहस्यमयी विस्मादमयी अवस्था तो उत्पत्ति नहीं हुई, जन्म नहीं होया, दरअसल कविता कविता ही नहीं, वो शायरी शायरी ही नहीं। विस्माद जिथे मनुख हैरान हो जाए, विस्म हो जाए, रहस्य की दुनिया दे खो जाए, इसलिए तीक्षण बुद्ध चाहिए। तो कवि का विस्माद अबोध अवस्था ते नहीं खड़ा, सुबोध अवस्था ते खड़ा, लेकिन खड़ा है हिरदे दे तल ते। इस वास्ते कवि कोल रहस्य का थोड़ा जिहा रस भी है, कवि कोल विस्माद का थोड़ा जिहा रहस्य भी रस भी है, जदके ए रस बच्चे कोल नहीं है। हैरान कुन अवस्था जरूर है लेकिन ये रस नहीं है। विस्माद दे च फिर जीवदे ने संत, ये तीसरी कोटि च आ जांदे ने, और ये तीसरी कोटि शिखर है, सिरमौर है, उच्चता है। ये अपनी आत्मा दे तल ते जीवदे ने, ते आत्मा दे चों जो कुछ भी चारों पासे अंकुरित होया है और होंदा रहिंदा है, इनू वेख वेख के वो विस्माद होंदे ने, इसनू वेख वेख के वो रस लेंदे ने। ऐसा जगत दिच जो कुछ अंकुरित होंदा है उस परम आत्मा तो उन्हों वेख वेख के गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने
मैं विस्माद दे चला गया। वेख विडान रिहा विस्माद, नानक बुझन पूरे भाग। साहिब कहिंदे ने मैं ए विडान ए कौतक वेख के विस्माद हो गया। पर ए विस्मादमई अवस्था भी साहिब कहिंदे ने नानक बुझन पूरे भाग, कोई बुझदा है कोई जानदा है पूरे भागा नाल। भाव उसकी प्रालब्ध उच्ची होवे, उसके पुरबले संस्कार महान होवन, उहदे ते प्रभु की दया बहुत वड्डे पद्धर ते होवे, तां किते ओह विस्मादमई जीवन जीवदा है, रहस विच जीवदा है। अजोकी सदी ये जो 20वीं सदी है ये रस विहीन हो गई है, क्योंकि रहस विहीन हो गई है, स्वाद विहीन हो गई है, क्योंकि विस्माद विहीन हो गई है। स्वाद ते उत्थे है जिथे विस्माद है, रस ते उत्थे है जिथे रहस है। रहस खो गया, रस खो गया, विस्माद खो गया, स्वाद खो गया। विस्माद क्यों खोया, रहस क्यों खोया, अहंकार वध्या। अहंकारी कहिंदा है मैं बदलां नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा, और मैं जान भी लिया है। मैं सूरज नूं जो वेख्या है मैं वेख लिया पूरा, और मैं जान भी लिया है। ये धरती ये मैं वेख ली है और मैनू जान भी लिया है। ये किसे वक्त धरती दा सूरज दा एक हिस्सा सी, ये धरती टुट के ये थले आई, एक पासे होई, सदियां तक गर्म रही, फिर ठंडी होई, फिर इस देश बनस्पति पैदा हुई, फिर सहजे सहजे ए जीवन चलिया जो अज विचर रहा है। इस तरीके नाल एक जानकार बंदा कह देंदा मैं ते सब कुछ जानदा। इस वास्ते विज्ञानक दे कोल रहस्य नहीं होंदा, विस्माद नहीं होंदा, स्वाद नहीं होंदा। विज्ञानक कोल कवि वाला हिरदा नहीं, विज्ञानक कोल शायर वाला हिरदा नहीं। उसकी पदार्थ दे नाल नेड़ता होंदी होई भी पदार्थ तो दूरी है, क्योंकि उसने पदार्थ दे वजूद नूं वेख्या, पदार्थ दी रूह नूं नहीं वेख्या। संसार दे आकार नूं वेख्या, उन्हें इस दी बुनियाद नूं नहीं वेख्या, उसने इस दे नूर नूं नहीं वेख्या। तो साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान मैं वेखदा और वेख वेख के विस्माद हो रहा, रहस विच खो गया। की कुछ वेख रहे हैं और किन्ना क पसारा है इस श्लोक दे गिनती दे मुताबिक गुरु नानक देव जी महाराज दसदे जा रहे ने। विस्माद नाद विस्माद वेद प्रथम ते मेरे लिए जो आवाज है जो मेरे कान सुन देने, इनू सुन सुन के मैं विस्माद दे चला जाना। असी भी सुनते हैं, बदलां दी गर्जन सुनते हैं, कोयलां दी कूकू सुनते हैं, मनुखां दे बोल सुनते हैं, सागर दा गर्जन सुनते हैं, पवन दी शाशां सुनते हैं, चिड़िया दा चहचहाना सुनते हैं, संगीत सुनते हैं, गीत सुनते हैं, पर विस्माद नहीं, रहस्य नहीं। कारण असी नाद दी खलड़ी वेखते हैं, रूह नहीं वेखते, उपरों ही सुनते हैं। ये जितनिया आवाजा ने जो शब्द जो आवाज जो स्वर जो ध्वनि साढ़े कन विच पै रही है, गुरु नानक देव जी महाराज ते इंज कहिंदे ने, जो बोलत है मृग मीन पंखेरू सो बिन हर जापत है नहीं होर। मेरे लिए ते हे परमात्मा तू ही बोल रहे हैं, किधरे सागर दे गर्जन दे च, किधरे पवन दी शांशां दे च, किधरे मनुखां दी भाषा दे च, किधरे बंदियां दी बोली दे च, किधरे पंछियां दे चहचहाण दे च। ए आवाज सब तेरी है, ए धुन सब तेरी है, जे तारूप काया तेरी, ये जितना आकार मैनू दिखाई दे रहा है ये ते तेरी काया है, ये ते तेरा वजूद है, और इस वजूद दे चों जो कुछ भी प्रगट हो रहा है ये तू ही है। तो साहिब कहिंदे ने विस्माद नाद, ये जो शब्द है, ये जो स्वर है, ये जो आवाज है, इनू मैं सुनदा ते विस्माद हो जाना, हैरानगी होवेगी। विस्माद शब्द नूं सुन के, विस्माद आवाज नूं सुन के। हां आवाज दी अपनी महानता है, अगर इस नूं किधरे बारीकियां दे नाल सुनिया जाए। कद किसे ने बारीकी नाल सुनिया है गऊ दा बोलना, कद किसे ने बारीकी नाल सुनिया है कुत्तियां दा भौंकना, कद किसे ने बारीकी नाल सुनिया है शेर दा गर्जना ते चिड़ियां दी चहचहाहट। हकीकत है जिस दिन किसे ने भी
ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ ਬਿਸਮਾਤ ਤਾਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਸਵਾਦ ਦੀ ਗੰਗਾ ਵਗ ਤੁਰੇਗੀ। ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਉਮੜਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲ ਸੁਣੇ, ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ, ਸਵਰ ਧੁਨੀ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਤਾਂ ਰਹੱਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਚੋਂ ਬੰਦਾ ਖੋ ਕੇ ਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਆਨੰਦ ਮਾਣੇਗਾ ਪਰਮ ਰਸ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ, ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਦਿਆ ਗਿਆਨ, ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਗਿਆਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 64 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਕਸੀਮ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਕਲਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਇੰਝ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ 64 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਦਿਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਜਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਗਿਆਨ, ਸੂਝ, ਸਮਝ, ਇਹ ਵਿਦਿਆ। ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਜੋ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਰਹੱਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਜਾਏ ਉਹ ਰਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਹੋ ਕੇ ਸੰਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਭਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ, ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਕੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਗਿਆਨ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੈਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੋਵੇ। ਦਰਖਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਛੁਪਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਰੇਤ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰਾ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮੇਟ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਏ। ਸਾਗਰ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਕਿਰਨ, ਚੰਦਰਮਾ, ਮਨੁੱਖ, ਬਨਸਪਤੀ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਖੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਉਮੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਮਨੁੱਖ ਅਗਰ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤਾਂ ਇਸ ਸਾਗਰ ਦੇ ਚੋਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਘੁੱਟ ਪਾਨ ਕਰਕੇ ਰਹੱਸ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਜਦ ਵਿਦਿਆ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਬਿਖਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਜੋ ਜ਼ਰਰੇ ਜ਼ਰਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ, ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਤੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਚਿੜੀ ਤੋਤੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਤੋਤਾ ਕੌਵੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਕੌਆ ਇਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ, ਇਲ ਬਾਜ਼ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਬਾਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਕੋਇਲਾਂ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਸਿਰਫ ਆਕਾਰ ਦਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਰੀਕ ਭੇਦ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੇ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਸੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਮਨੁੱਖ ਵੀ ਇੱਕ

0: परमात्मा भी सिर्फ वगदी हुई हवा ही होवे और कुछ नहीं। संत लई ते वगदी हुई पवन ये ते परमात्मा है। चारों पासे परमात्मा छू रहा है, सानू स्पर्श कर रहा है, किधरे पवन दे रूप च, किधरे धरती दे रूप च, किधरे सूरज दियां किरणां दे रूप च, किधरे होर अदृश्य तरंगां दे रूप च, चारों पासे सानू छू रहा है। पर एक बदकिस्मती है, असी उसनू नहीं छू रहे, असी अखां बंद कर लैने आ। असी अपने हिरदे दे उत्ते एक बहुत वड्डा पत्थर रख लैने आ, फिर भी सानू छू रहा है। उहदी स्पर्शता दा बोध क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बुद्धि विकसित नहीं हुई। गुरु जन पास आना, सत्संग दे च आना, इसका मुख मकसद जिहड़ा है वह इतना ही है कि हार परयो स्वामी के द्वारे दीजे बुद्ध विवेका। हे प्रभु, वह विवेक बुद्ध मैनू दे कि चारों पासे तू जिहड़ा मैनू छू रहा है, इसका मैनू बोध हो जाए, इसका मैनू पता चल जाए। ऐसा भी हो सकता है कि मां बाप का हथ जो सिर ते पे है, अगर बंदा रहस्यवादी है तो ऐसा सोचेगा अज ते परमात्मा ने असीस दे दी, अज ते ईश्वर ने असीस दे दी, मां दे रूप विच, पिता दे रूप विच, गुरु दे रूप विच, उस्ताद दे रूप विच। असीस ते चारों पासे मिल रही है, पात्रता होनी चाहिए है, योग्यता होनी चाहिए है, बोध होना चाहिए है। तो साहिब कहंदे ने, हे प्रभु तू किधरे पवन रूप विच मैनू छू रहे हैं, मैनू ताजगी दे रहे हैं, मैनू जिंदगी दे रहे हैं, और इस वगदी हुई पवन नू वेख के मैं विस्माद हो जाना। विस्माद पौन विस्माद पानी, हे प्रभु वगदे हुए दरियावां नू, बरस दियां हुईयां बूंदां नू, सागर दियां लहरां नू, झीलां नू, और थां थां ते पए पानी नू, ते बुझा रहे प्यास ए पानी, मैं ते विस्माद हो जाना। शरीर विच ए पानी, हे प्रभु मैं ते रहस दी दुनिया च खो जाना। ये पानी असी वेखदे हां, जैसे बारीक बुद्धि प्राप्ति होवेगी, पानी पानी नहीं दिखाई देगा, पानी प्रभु अकाल पुरख दा रूप दिखाई देगा। हकीकत है, गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज कहंदे ने, कहूं फूल होए के भले राग फूले। हे प्रभु कमाल दी गल है, किधरे मेरे सामने तू फूल के खड़े हैं, फूलां दी तरह फूल के खड़ा है, फूलां दे च ऐसा सोपन, ऐसी कोमलता, तू इतना कोमल है, तू इतना सुंदर है, तू इतना सुगंधित है। कहूं फूल होए के भले राग फूले, कहूं भंवर होए के भली बात भूले। हे प्रभु मैं ते होर कोतक वेख के हैरान हो रहा कि किधरे पौरा हो के तू आप ही अपने रूप ते मस्त होया फिरदा है, आप अपनी सुगंधी ते मस्त होया फिरदा है, फूल दे चारों पासे परिक्रमा पिया करदा है, फुल तो आप, भौरा तो आप, अपनी आप दे ऐसी लीनता, अपने आप दे ते ऐसा तू मोहित होया फिरदा है। ये एक दृष्ट है, एक धार्मिक दृष्टि है। जब ये मिलती है तो चारों पासे पसारा ब्रह्मदाई दिखाई देता है। सतगुरुदेव जी महाराज कहंदे ने, पानी नू वेख के मैं विस्माद अवस्था चला जाना, प्यास लगती है, पानी पींदिया पींदिया जो शांति मिलती है, चैन मिलता है, शरीर नू जो आराम मिलता है, हे प्रभु मैं दंग रह जाना। इतनी वड्डी तेरी ये दात, इतनी वड्डी तेरी ये सौगात, और इस दे च इतना तू रस पा दिता, इतना तू जीवन पा दिता। विस्माद अग्नि खेड़े विडाने, मैं विस्माद हो जाना अग्नि नू वेख के जो तरह तरह दे कौतक पई कर दिए। किधरे बड़वा अग्न, किधरे दावा अग्न, किधरे जठर अग्न। दावा अग्न जो बनस्पति दे विच है, बड़वा अग्न जो सागर दे विच है, जठर अग्नि जो जीवां दे शरीर दे अंदर है। साहिब कहंदे ने, मैं ते दंग हां, वख वख ए अग्नियां वख वख कौतक कर रही ने, अपने अपने ढंग नाल ये तमाशा कर रही ने, और इन्हां दा तमाशा मैं रोज पिया वेखदा। किधरे बड़वा अग्न सागर नू अंदोलित करके उनू बदलां दा रूप दे देंदी है, किधरे दावा अग्नि बनस्पति दे चों प्रगट होके तरह तरह दे होर कौतक कर दिए, ते किधरे शरीरां दे च जठर अग्नि पाचन शक्ति दा काम कर दिए, जीवन देण दा काम कर दिए। अग्नि दे ऐसे कौतक ते जीवन देण दे वसीले वेख के, हे प्रभु मैं ते विस्माद दी दुनिया दे खो जाना। विस्माद अग्नि खेडे विडाणी, विस्माद धरती विस्माद पानी। साहिब कहिंदे ने मैं विस्मादमई अवस्था चला जाना धरती दे कौतक वेख के, धरती दी होंद नूं वेख के, इहदी कृत करम नूं वेख के। ते इस धरती दे उत्ते जो अनेकां खाणियां ने, अंडज जेरज सेतज उतबुज, जो अंडियां तो पैदा हो रहे हैं, जेर तो पैदा हो रहे हैं, पसीने तो पैदा हो रहे हैं, उत्पुज खाणीए जो बनस्पति है, इन्हां खाणियां नूं वेख के भी मैं विस्मादमई अवस्था दे चला जाना। विस्माद साध लगे प्राणी, हे अकाल पुरख जीवां नूं जद स्वाद विच लीन मैं देखदा ते स्वादां विच ग्रसे हुए मैं देखदा, मैं ते इत्थे भी विस्माद हो जाना। हर जीव किसे न किसे रस दे पिछे दौड़ रहा है, ते हर जीव दे अंदर कोई ना कोई रस जेड़ा है वो प्रधान है। विस्माद साध लगे प्राणी, विस्माद संजोग विस्माद विजोग, हे प्रभु जीवां दा संजोग ते जीवां दा विजोग। मनुख मनुख दा ही संजोग नहीं, मनुख दा पशुआं नाल भी संजोग है। घर दे जो गऊ है पालतू उस नाल भी कोई साडा पूर्वला संजोग है। घर दे जो कुत्ते ने उन्हां नाल भी साडा कोई संजोग है पूर्वला। घर दे जो बूटे ने फुल्लां दे चाहे फलां दे, इन्हां नाल भी साडा कोई पूर्वला संजोग है। मनुख दा मनुख नाल जो मेल, मनुख दा जो बनस्पति नाल मेल, जिहड़ी बनस्पति ज्यादा अंदोलित करे उस नाल कोई साडा संबंध है। जिहड़े पशु ज्यादा अंदोलित करन, ज्यादा कशिश दा बायस बनन, उन्हां पशुआं नाल साडा कोई संबंध रह गया है। और इसे तरीके नाल जिहड़ा मनुख ज्यादा प्रभावित करे ते जिसकी चाहत बहुत ज्यादा पैदा होवे उस नाल कोई संजोग साडा पूर्वला भी है। तो सतगुरदेव जी महाराज कहिंदे ने जीवां दे तरह तरह दे मैं संजोग वेखदा, वेख के हैरान हो जाना, ते संजोग दे नाल जुड़िया होया विजोग वेखदा, विछोड़ा वेखदा, मिलना है ते फिर विछड़ना है, इह भी मैनूं विस्मादमई अवस्था विच लै जांदा है। विस्माद बुख विस्माद भोग, जीवां नूं जो भुख लगदी है इह वेख के भी मैं हैरान हो जाना, ते भुख लगे मनुख जद भोग दे चलीन होंदे ने, रस दे चलीन होंदे ने, तां उस भुख नूं वेख के ते भोग नूं वेख के हे प्रभु मैं ते समाधी लीन हो जाना। विस्माद सिफत विस्माद सलाह, तेरी जिहड़ी सिफत ओ सलाह है उस दे जो रस है ते आनंद है, हे प्रभु इह वेख के भी मैं विस्माद हो जाना। विस्माद उजड़ विस्माद राह, तरह तरह दी उजाड़ ते रस्ते, भटकना ते मार्ग ते चलना, चाहे ये भटकना जमीन ते होवे ते चाहे चलना जमीन ते होवे ते चाहे ये भटकना सुरत दा होवे ते सही ढंग नाल चलना मनुख दी सुरत दा होवे। साहिब कहिंदे इस भटकने नूं वेख के, उस उजड़ नूं वेख के, उजाड़ नूं वेख के ते रस्तियां नूं वेख के ये भी मैं विस्मादमई अवस्था विच लीन हो जाना। वेख विडाण रहा विस्माद, नानक बुझण पूरे भाग। मैं इस विस्माद नूं वेख के आनंदमई अवस्था विच लीन होके रस माणदा, पर यह विस्माद बुझिया जांदा है उच्चे भागां नाल, उच्ची बख्शिश नाल, उच्ची रहमत।
1: कैलगरी च इको एक धार्मिक रेडियो, पंजाबी रेडियो 102.7 FM, जिथे 24 घंटे सत्तो दिन बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम पेश कीते जांदे ने। इना प्रोग्रामा नू स्पॉन्सर करन लई तुसी पंजाबी रेडियो 102.7 FM नू 403-238-6867 यानी 403-238-6667 ते संपर्क कर सकते हो। सुनते रहो पंजाबी रेडियो 102.7 FM कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 23 32nd एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 2000 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਰਿਓ ਬੈਂਕਵੇਟ ਹਾਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 2850 ਹੋਪਵੈਲ ਪਲੇਸ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईवस्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा थोड़े तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह की रूफिंग साइडिंग स्टुको सॉफ्ट फिशिया स्मार्ट रिम फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड।
1: प्रोग्राम का यह हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 ट्रेंट एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा त्वाडे तक ग्रोसरी बकेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दी एप ग्रोसरी बकेट्स तो तुसी घर बैठे ग्रोसरी ऑर्डर कर सकते हो। इना कोल 450 तो वध ग्रोसरी प्रोडक्ट्स अवेलेबल ने। तुसी ग्रोसरी ऑर्डर करन लई इना नू कॉल कर सकते हो अते इना दा ग्रोसरी ट्रक त्वाडे घर दे अगे आ जांदा है। स्टूडेंट ग्रोसरी प्लान अते होर जानकारी लई कॉल कर सकते हो 587-333-9091 587-333-9091

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे सत्तो दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा ABM कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th Avenue North East Calgary

कहू न पीजे संयम स्वामी बोले मीठे बैण। महाराज सर कदे नाल पूजा होनी? कहिंदे को चीज नाल, प्रभु जी को नाम जपत मन चैन। मन विच वाहिगुरु जपना शुरू कर, तेनू चैन आ जाएगा, होर किसे तरीके नाल नहीं होना। प्रभु जी

ते प्रभ शरण प्रगटे भले संयोगा। भाई स्नान करन लग्या, चित जोड़ के मन च सिमर सतनाम श्री वाहिगुरु। फिर स्नान नाल तन ते मन रोग हो जाणगे। ते जे आपां फोटोआं ही पाउणियां हरिमंदर साहिब पहुंच गए, हाथ जोड़ के इदां लै फोटो खिंची, हरिमंदर साहिब मत्था टेकना भुल गए, अंदर तक जांदिआं तूं इह वेख रिहा वी फोटो किन्ने बंदिआं ने वेख लई, स्टेटस लाया है किन्ने बंदिआं ने वेख लिया। कई वार तां चीज दस के आउंदे वी मैं लाइव उत्ते मत्था टेकण लगा, मैं कीर्तन वालिआं दे पिछे पिछे बहिणा, वेख लिओ फोटो। सज्जनों लोग फोटो वेख लैणगे, 2-4-500 बंदा फेसबुक ते वेख लेगा, पर चेते रखियो अपनी हाजरी गुरु रामदास साहब दे चरणा विच नहीं लगनी। जे तू चाहुंदे गुरु रामदास साहब दे चरणा च हाजरी लगे, फिर चित जोड़ के बह ते कीर्तन सुन, कर इशनान सिमर प्रभ अपना, मन तन भय अरोग। अज हजूर बख्शिश कर दे, भाई चंदन भी शुद्ध नहीं है, चंदन भी सच्चा नहीं, ओदे नाल भी

प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130-4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक M&R रूफिंग एंड साइटिंग लिमिटेड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी रूफिंग, साइडिंग, स्टुको, सॉफ्ट फेशिया, स्मार्ट रिम, फ्लैट रूफ अते रेनोवेशन बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी रंजीत विर्क जी नू 403-903-0483 यानी 403-903-0483 ते संपर्क कर सकते हो। M&R रूफिंग एंड साइडिंग लिमिटेड। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110-76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਨੋਟ ਕਰੋ 403-225-1111 403-225-1111। ਏਸ਼ੀਆ ਪੈਸੀਫਿਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨੋਟ ਕਰੋ, ਯੂਨਿਟ ਨੰਬਰ 144-3670-63 ਐਵੀਨਿਊ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਕੈਲਗਰੀ।
1: ਸਤ ਸਾਹਿਬ, क्या आप अपने जीवन में सुख शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampaljee.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम, वैनिटी, क्लोज़ेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लेण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुंबी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी लई कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120-4150-109th Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिंह सिद्धू दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दी लाइफ इंश्योरेंस जां विजिटर इंश्योरेंस बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी हरपिंदर सिद्धू जी नूं 403-404-3500 यानी 403-404-3500 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब इंश्योरेंस तो हरपिंदर सिंह सिद्धू। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
1: सत साहिब, क्या आप अपने जीवन में सुख, शांति और समाधान चाहते हैं? क्या आप नशा, पारिवारिक कलह और जीवन की परेशानियों से मुक्ति पाना चाहते हैं? तो अवश्य पढ़ें जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित अनमोल पुस्तकें ज्ञान गंगा, जीने की राह व गीता तेरा ज्ञान अमृत। ये सभी पुस्तकें पंजाबी, उर्दू, मराठी व अन्य भाषाओं में भी उपलब्ध है। ये पुस्तकें पूर्ण परमात्मा, सच्ची भक्ति विधि और मोक्ष का मार्ग सरल भाषा में समझाती हैं। लाखों लोगों ने इन्हें पढ़कर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव पाया है। कनाडा में ये पुस्तकें बिल्कुल निःशुल्क मंगवाने के लिए आज ही हमारी वेबसाइट jagatgururampalji.org पर जाएं या 306-581-8061 पर संपर्क करें।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकदे हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 32nd Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तों तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तों किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नूं 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी लॉ दा पता है यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न ट्रेडिशनल कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नूं कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लै के बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयर गिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लै के जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सिद्धा सरकार नू बिल करते ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसे भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखों जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है यूनिट नंबर 11 2316 27 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमें गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउन लई जसकरन बराड़ नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसी मालवा टायर्स नू 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616, 44th स्ट्रीट, साउथ ईस्ट, कैलगरी।
2: तन ओ मस्तक, तन ओ

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th एवेन्यू साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैम्पेड ग्राउंड।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रियो बैंक्वेट हाल दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ब्याह शादी दे प्रोग्राम, बर्थडे पार्टी जां होर फंक्शन संबंधी हाल बुक करन दी जानकारी लैण लई तुसी रियो बैंक्वेट हाल नूं 403-633-2000 यानी 403-633-2000 ते संपर्क कर सकदे हो। रियो बैंक्वेट हाल दा पता है यूनिट नंबर 2850 होपवेल प्लेस नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा एबीएम कॉलेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह दे हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स दी जानकारी लैण लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300 और जानकारी लई साडी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144 3670 63 एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

कैलगरी 24 घंटे 7 दिन चलन वाला इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो पंजाबी रेडियो 102.7 FM धार्मिक प्रोग्रामा दा आनंद मानन ले आज ही अपने करा ते कारा दी रेडियो नू पंजाबी रेडियो 102.7 FM ते ट्यून करो पंजाबी रेडियो।

प्रोग्राम दा एह हिस्सा तुहाडे तक सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे ड्राई वॉल रूफिंग इंसुलेशन दे नाल नाल किसी भी प्रकार दे कस्टम मेटल मिटन साइडिंग दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी अज ही निर्वैर जौहल जी नूं 403-690-8700 यानी 403-690-8700 या फिर भजन सिंह जौहल जी नूं 403-561-0227 यानी 403-561-0227 ते संपर्क कर सकते हो। सुंदर बिल्डिंग एंड सप्लाईज लिमिटेड दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 4612 6th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैन ले तुसी पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकते हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डिजर्डिंग इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
2: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ, डिसेबिलिटी, ऑटो, होम, मोटरबाइक, बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210 2323 32nd Avenue North East Calgary।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसी अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो, ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इन्हां तों किसी भी तरह दे नवे ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीआं सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिवें गैराज फ्लोर दे स्ट्रोंग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड़ नूं कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक ते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका ते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210-4310-104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।
1: ए प्रोग्राम तुहाडे तक केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। विजिट केयरिंग होम हेल्थ सॉल्यूशंस, यूनिट नंबर 124-4774 वेस्ट विंस ड्राइव, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। किसी भी तरह की जानकारी ले आज ही केयरिंग ते कॉल करो 403-605-6300 ते, यानी 403-605-6300 ते।
2: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक HMP कस्टम कैबिनेट्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे कस्टम किचन, बार्स, वॉशरूम वैनिटी, क्लाजेट अते कमर्शियल मिल वर्क बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी पॉल सेखो जी नूं 403-829-5000 या फिर 403-701-4947 ते संपर्क कर सकदे हो। HMP कस्टम कैबिनेट्स लिमिटेड दा पता है, यूनिट नंबर 11-2316 27 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd Street, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दी साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे कम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इन्हां दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144-3670 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

0: कैलगरी विच 24 घंटे 7 दिन चलन वाले
1: पंजाबी रेडियो 102.7 FM वालों हर रोज शब्द कीर्तन धार्मिक कथा ताड़ी वारा तो इलावा होर भी बहुत सारे धार्मिक प्रोग्राम प्रसारित किए जाते ने जिन्हां च स्टूडियो दे नंबर उत्ते कॉल करके तुसी भी हिस्सा ले सकते हो।
0: प्रोग्रामां संबंधी या सहयोग लई किसी भी तरह की जानकारी लैण लई तुसी फोन कर सकते हो। फोन नंबर है 403-238-6667।
1: होर जानकारी लई विजिट करो punjabiradio.ca। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
0: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिवें लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लैण लई तुसी परमजीत पलाहा जी नूं 403-554-4444
1: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-2332 32nd Avenue North कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक ट्रैवल वर्ल्ड दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। टिकटां दी किसी भी तरह दी जानकारी लैण लई तुसीं अज ही ट्रैवल वर्ल्ड नूं 403-717-0771 ते यानी 403-717-0771 ते संपर्क कर सकते हो। ट्रैवल वर्ल्ड दा पूरा पता नोट करो। ग्रीन प्लाजा यूनिट नंबर 1130 4818 वेस्ट विंड ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
2: ताती वो न लग गई

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पाठ पूजा वालियां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल धार्मिक ऑडियो अते वीडियो, रेडियो, धार्मिक वॉल हैंगिंग्स, शस्त्र, ककार, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स जिवें ढोल, हारमोनियम, तबला, तुम्बी अते हर तरह दे पूजा दे समान दी जानकारी ले कॉल करो 403-768-1681 403-768-1681। इना दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 1120 4150 109th एवेन्यू नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए 24 घंटे 7 दिन मोबाइल सर्विसेज प्रदान करदे ने। इना तो किसी भी तरह दे नवें ते पुराने ट्रक एंड ट्रेलर टायर्स, व्हील बैलेंस एंड अलाइनमेंट्स, टायर रोटेशन एंड रिपेयर्स दीयां सेवावां लैण लई तुसीं मालवा टायर्स नूं 403-899-1985 जां फिर 403-899-1984 ते संपर्क कर सकते हो। मालवा टायर्स एंड सर्विसेज दा पता है, बिल्डिंग नंबर 8616 44th स्ट्रीट साउथ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दी सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे इंडियन टीक वुड मेड बेड बॉक्स, सोफे, लिविंग डाइनिंग ते बेडरूम फर्नीचर तो इलावा होम डेकोर दे सामान बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसीं पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर नू 403-798-0063 यानी 403-798-0063 ते संपर्क कर सकदे हो। पंजाब फर्नीचर्स एंड डेकोर दा पता है, यूनिट नंबर 2110 76 वेस्ट विंड्स क्रिसेंट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

0: प्रोग्राम का यह हिस्सा खालसा कलेक्शन के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना कोल सभ्याचारक अते धार्मिक जिवें कि गुटका साहब, गतका अते दुमाला, शस्त्र, ककार, हर प्रकार दे म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स, दस्तारां, छोटी बच्चियां दे सूट, सर्ब लो दे पांडे, फुलकारियां ते लोईयां वर्गियां वस्तां उपलब्ध हन। होर जानकारी लई 587-917-0807 ते कॉल करो। खालसा कलेक्शन दा पता नोट करो। सेकंड फ्लोर, यूनिट नंबर 3210, 4310, 104 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह की साइडिंग, रूफिंग, सॉफ्ट फेशिया, जेम्स हार्डी, ईव स्ट्रॉफ अते स्मार्ट बोर्ड दे काम कराउण दी जानकारी लई एग्जोटिक एक्सटीरियर्स ग्रुप नू कॉल कर सकदे हो 403-710-0007, 403-710-0007।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना दा फोन नंबर नोट करो 403-225-1111, 403-225-1111। एशिया पैसिफिक इमीग्रेशन दे मनिंदर सिंह ढिल्लो होरां दा पता नोट करो, यूनिट नंबर 144, 3670, 63 एवेन्यू, नॉर्थ ईस्ट, कैलगरी।

प्रोग्राम दा ए हिस्सा त्वाडे तक कैनेडियन स्क्रू पाइल्स दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। होम एक्सटेंशन, पैटियो डेक, प्रीकास्ट कंक्रीट स्टेप अते किसी भी तरह दी सॉफ्ट ग्राउंड जिमे गैराज फ्लोर दे स्ट्रॉन्ग अते सिक्योर बेस लई स्क्रू पाइल्स इंस्टॉल कराउण लई जसकरन बराड नू कॉल करो 403-439-7700 403-439-7700। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक फेयर डील फर्नीचर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। किसी भी तरह दे मॉडर्न, ट्रेडिशनल, कस्टमाइज्ड फर्नीचर दी जानकारी लई पिछले 33 सालां तों कैलगरी विच सेवावां दे रहे फेयर डील फर्नीचर नू कॉल करो 403-250-5646 403-250-5646। इना दा पता है 2023 34th स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा इंटरनेशनल एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट लिमिटेड दे सहयोग नाल तुहाडे तक पहुंचाया जा रहा है। जे कोई तुहाडा रिश्तेदार कैनेडा विच पढ़न लई आउणा चाहुंदा है या तुसी कैनेडा विच रहिंदे हो ते किसे भी कॉलेज विच पढ़न लई एडमिशन लैणी चाहुंदे हो ता इस दी जानकारी लई कॉल करो बॉबी डॉड एट 403-561-9811 403-561-9811। साडा पता है इंटरनेशनल एजुकेशन 1130 4818 वेस्ट विंड्स ड्राइव नॉर्थ ईस्ट कैलगरी।

प्रोग्राम का यह हिस्सा ABM कॉलेज के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ABM कॉलेज विच किसी भी तरह के हेल्थ प्रोग्राम्स, बिजनेस या IT प्रोग्राम्स की जानकारी लैन लई कॉल करो 403-719-4300 403-719-4300। होर जानकारी लई साड़ी वेबसाइट abmcollege.com ते विजिट करो। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो तुसी फुल हाउस लंबर पैकेज, बेसमेंट ते गैराज मटेरियल दे नाल नाल सीटर ते फेंस दे समान बारे कोई भी जानकारी लैण लई 403-433-5555 यानी 403-433-5555 ते संपर्क कर सकदे हो। सुंदर लंबर इंडस्ट्रीज दा पता है 3501 23rd स्ट्रीट नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक YYC होम केयर सर्विसेज दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। ए किसे भी उम्र तो लैके बुजुर्गां तक दी घर विच रह के संभाल करदे ने। इना दे एक्सपीरियंस्ड पंजाबी केयरगिवर्स डेली एक्टिविटीज जिवें नवाउणा, दवाई देना, अपॉइंटमेंट्स ते लैके जाना या सफाई विच मदद करदे ने। तुहानू जेब विचों कोई भी खर्चा नहीं आएगा, ए सीधा सरकार नू बिल करदे ने। होर जानकारी लई कॉल करो 825-760-0983 825-760-0983।

0: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक कैसिडी हे इंजरी लॉ तो तारा कैसिडी जी दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। इना तो किसी भी तरह दे मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इंजरी क्लेम बारे कोई भी जानकारी लैण लई तुसी तारा कैसिडी जी नू 403-770-1099 यानी 403-777-1099 ते संपर्क कर सकते हो। कैसिडी हे इंजरी ला दा पता है, यूनिट नंबर 1507 14 एवेन्यू साउथ वेस्ट कैलगरी।
1: प्रोग्राम दा ए हिस्सा तुहाडे तक रासा प्लेडियम दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। फैमिली डिनर, केटरिंग, स्मॉल बर्थडे पार्टीज अते होर जानकारी लई कॉल करो 403-454-0347 403-454-0347 रासा प्लेडियम दा पता है 202 17th Avenue साउथ ईस्ट कैलगरी नियर स्टैंपेड ग्राउंड।
0: ये प्रोग्राम तुहाडे तक सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर दे सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर अपनियां तिन्नां लोकेशंस तों हफ्ते दे 7 दिन सेवा प्रदान करदे ने। इन्हां दी पहली लोकेशन दा फोन नंबर है 403-266-5200। इन्हां दी दूजी लोकेशन दा पता है 7171-80 Avenue नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब दी तीजी नवी लोकेशन दा पता है यूनिट नंबर 570-65V फैलकन ब्रिज बुलेवर्ड नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। सांझा पंजाब ग्रॉसरी स्टोर कैलगरी।

0: परमजीत पलाहा डेजर्डिन इंश्योरेंस एजेंट के सहयोग नाल पहुंचाया जा रहा है।
1: इना तो किसे तरह दी इंश्योरेंस जिमे लाइफ डिसेबिलिटी ऑटो होम मोटरबाइक बोट अते होर बिजनेस इंश्योरेंस बारे जानकारी लेन ले तुसी परमजीत पलाहा जी नु 403-544-4444
0: यानी 403-554-4444 ते संपर्क कर सकते हो। परमजीत पलाहा जी दे ऑफिस दा पता है यूनिट नंबर 210-3332 नॉर्थ ईस्ट कैलगरी। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। कैलगरी दे इको एक पंजाबी धार्मिक रेडियो 102.7 FM ते हुन सर्वन कर दिया श्री हरमंदर साहब अमृतसर तो श्री रहरा साहब जी दे पाठ। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

रागासा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। सो पुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगम अगम अपारा। सब त्याव है सब त्याव है तुद जी हर सच्चे सृजनहारा। सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा। हर त्याव हो संत हो जी सब दुख विसारन हारा। हरा पे ठाकुर हरा पे सेवक जी क्या नानक जंत बिचारा। तू घट घट अंतर सर्ब निरंतर जी हर एको पुरख समाणा। एक दाते एक बेखारी जी सब तेरे चोज बिडाणा। तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर न जाना। तू पार ब्रह्म बेअंत जी तेरे क्या गुण आख बखाणा। जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा। हर त्याव है हर त्याव है तुद जी से जान जुगम है सुखवासी। से मुक्त भय जिन हर त्याया जी तिन तूटी जमकी फासी। जे निरपौ जिन हर निरपौ त्याया जी तिन का पौ सब गवासी। जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी। से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी। तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता। तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता। तेरी अनक करह हर पूजा जी तप ताप है जप है बेअंता। तेरे अनेक पढ़ है बो सिमृत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता। से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता। तू आद पुरख परंपर करता जी तुद जेवड़ अवर न कोई। तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई। तुद आपे भावै सोई वरतै जी तू आपे करह सो होई। तुद आपे सृष्ट सब ओ पाई जी तुद आपे सिरज सब गोई। जन नानक गुण गावै करते के जी जो सब सह का जान ओई। आसा महला चौथा। तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावै सोई थीसी। जो तू दे सोई हों पाई रहाओ। सब तेरी तू सबनी त्याया जिसनों कृपा करहें तिन नाम रतन पाया। गुरमुख लादा मन मुख गवाया तुद आप बिछोड़िया आप मिलाया। तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे तुझ बिन दूजा कोई नाहे। जी जंत सब तेरा खेल बिजोग मिल बिछड़िया संजोगी मेला। जिसन तू जाना है सोई जन जाना हर गुण साधी आख बखाना। जिन हर सेव्या तिन सुख पाया सहजे ही हर नाम समाया। तू आपे करता तेरा किया सब होए तुद बिन दूजा अबर न कोए। तू कर कर वेख है जान है सोए। जन नानक गुरमुख प्रगट होए। आसा महला पहला। तित सरवरडै पई ले निवासा पाणी पावक तिन्हे किया। पंक जो मोह पग नहीं चालै हम देखा तह डूबी अले। मान एक न चेतस मूढ़ मना हर विसरत तेरे गुण गलिया रहाओ।
ना हो जति सती नहीं पढ़या, मूर्ख मुगदा जन्म भया। प्रणवत नानक तिन की सरना, जिंतु नाही विसरिया। आसा महला पंजवा, भई प्राप्त मानुख देहुरिया। गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा कितै ना काम। मिल साध संगत भाज केवल नाम, सरंजाम लाग भवजल तरण कै। जन्म वृथा जात रंग माया कै रहाऊ, जप तप

एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। पातशाही दसवीं कवियो वाच बेनती चौपाई। हमरी करो हादर रक्षा, पूर्ण होए चित की इच्छा। तब चरणन मन रह हमारा, अपना जान करो प्रतपारा। हमरे दुष्ट सवै तुम काव हो, आप हादर मोहे बचाव हो। सुखी बसै मोरो परवारा, सेवक सिख सबै करतारा। मोर इच्छा निज करदै करिया, सब बैरन को आज संगरिया। पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रह प्यासा। तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाद मुझे वरी है, मरण काल का त्रास निवरी है। पूजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तोज जू करियो रक्षा। राख ले हो मुहे राखन हारे, साहेब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दशकंता। काल पाए ब्रह्मा बाप तरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आद अंत कै अवतारा, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार सिहि को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। सेवकन को सेव गुण सुख दियो, सतरन को पाल मोह बद कियो। घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर स्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछानै, घट घट के पट पट की जानै। जब उद करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हूँ, तुम मैं मिलत देह तर सब हूँ। जेते वदन सृष्ट सब धारै, आप अपनी बूझ उचारै। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत वेद भेद अरालम। निरंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूढ़ चारत भेदा, जाको भेव न पावत बेदा। ताको कर पाहन अनुमानत, महामूढ़ कश भेद न जानत। महादेव को कैत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह भिव। आप अपनी बुद्ध है जीती, वर्णत भिन्न भिन्न तो तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केहे विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग प्यो राव कही भूपा। अंडज जेरज सेत जकीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूं फूल राजा बैठा, कहूं सिमट भयो संकर कैठा। सागरी सृष्ट दिखाय चंपव, आद जुगाद स्वरूप सजंपव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख उबार असिख संगरो। दुष्ट जिते उठवा तुत पाता, सकल मलेश करो रण काता। ये अस तुझ तब सरणी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जावन पग परे ते हारे, तिनके तुम संकट सब टारे।
जो कल को एक बार त्यै है ताके काल निकट न ऐ है। रक्षा होए तहें सब काला दुष्ट अरिष्ट ट्रें तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे निहर हो ताके ताप तनक में हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई दुष्ट छाह छ सके न कोई। एक बार जिन तुम्हें संभारा काल फास्ते ताहे उबारा। जिन

दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। सवैया पाए गहे जब ते तुमरे तब ते को आंतरे नहीं आने हो। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत एक ना माने हो। सिमरत शास्त्र वेद सवै बहु भेद कह हम एक ना जाने हो। श्री असपान कृपा तुमरी कर

मत उच्ची मत पतदा रखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरुद्वारियां गुरुधामां दे

0: वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
1: राम सिमर पुछताहेगा मन, पापी जियरा लो करत है, आज काल उठ जाहेगा। लालच लागे जन्म गवाया, माया भरम पलाहेगा। तन जोवन का गर्भ न कीजै, कागत ज्यों गल जाहेगा। जौ जमाए केस गह फटकै, ता दिन किशना बसाहेगा। सिमरन भजन दया नहीं कीनी, तो मुख चोटा खाहेगा। धर्म राय जब लेखै मांगै, क्या मुख लै कै जाहेगा। कहत कबीर सुनो रे संत, साध संगत तर जाहेगा। तिलंग महला नावा काफी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। चेतना है तो चेत लै, निस दिन मह प्राणी। छिन छिन औद बिहात है, फूटै घट ज्यों पानी। रहाओ हर गुण काहे ना गावही, मूर्ख अज्ञाना। झूठै लालच लाग कै, नह मरन पछाना। अजहूं कछ बिगड़यो नहीं, जो प्रभु गुण गावै। कहो नानक तेह भजन ते, निर्भय पद पावै। तिलंग महला नावा, जाग लिहो रे मना जाग लिहो। कहां गाफल सोया, जो तन उपजया संग ही, सो भी संग ना होया। रहाओ मात पिता सुत बंद, जन हित जास्यों कीना। जियो छूट्यो जब देह ते, डार अगन में दीना। जीवत लो व्यवहार है, जाको तुम जानो। नानक हर गुण गाए लै, सब सोपन समानो। रामदास सरोवर नाते, सब उतरे पाप कमाते। सोए सुनंदड़ी मेरा तन मन मौला, नाम जपंदड़ी लाली। पंध जलंदड़ी मेरा अंदर ठंडा,

चंदना चंदना शरद रुत मूल ना मिटई काम, शीतल थीव नानका जपंदड़ो हर नाम। पौड़ी चरण कमल की ओट, उदरे सागल जन सुन परताप गोविंद, निरपाव पै मन तोट ना आवै मूल, संचया नाम धन।

जगत गुरु बाबा गुरु नानक देव जी महाराज जब जी साहब दी पावन छेवीं पौड़ी विच कुछ बुनियादी धार्मिक विचारां दा जिक्र करदे ने, प्रभु नू भा जाइए, उनू चंगे लग जाइए तां सब कुछ प्रवान हो जांदा है, पवित्र हो जांदा है, जन्मा जन्मांतरां दे संस्कार धुल जांदे ने। समूह धार्मिक साधना महज इस वास्ते है कि प्रभु नू भा जाइए। धार्मिक साधना दे प्राचीन समय तो यह भी एक साधना रही है तीर्थां दा रटन। ते तीर्थ दा अखरी अर्थ इन्ना ही है, ओ तट जिथो मनुख दरिया नू पार करदा है, नदी नू पार करदा है, जिथो पार होण दा वसीला मिले ओ तीर्थ। भाव सागर तो पार होण दा जो वसीला जिस थां तो मिले, जिथे प्रभु चिंतन जाग सके,